0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

लागि सम्पर्क 066-590-999 98-477-69-229। सेवा मोडल हस्पिटल प्राली बेसिसर स्वाद सानीमा बैंकको।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 7 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेक द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम टेक अहिले ठीक 8 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

लङ्जिङ्गेबी नासो तह रिमुबा बेरुसो मधेरी अनियमित शीर्षकर मात्रायो करिब 5 करोड़ भन्दा बढी मुई चु शीर्षक रिताई भन्दा बढी मुई बेरुजु राइनसरी तारखाबा आर्थिक वर्ष रे लङ्जिङ्गेबी तायु नास तहरी मनास्लु पर्वत रोहण रोयल्टी यो बातै मु सौलो नास तहरी विशेष प्राथमिकता कोलासोत नौ गिलुङारी गरीबी निवारण लागि मोरबै लागि होमस्टे व्यवस्थापन दिएर पाक शिक्षा तालिम लघु प्रहरी त क्या अब महिनारी मात्र यो आर्चना फरारी अभियुक्त थाहा भएको 3 वर्ष बढ़ी कैदी दिएर 59,000 जरिवाना असुल दे मनाङर बेङ्गौला नाच तहरी असुल लाल परिवा प्रमाण पेश अथवा बेरुजु शून्य अनियमित शीर्षक विषय तायो पालिका बेरुजु तारङ्गुदु ताए फेते लङ्जुङ्गेबी नास तहरी अब आर्थिक वर्षरी मब बेरुसु मुई मधेरी करिब 5 करोड़ रूपियाँ अनियमित शीर्षकरी मोबाइल मुइमो महालेखा कार्यालयजी सार्वजनिक क्लब नास तह प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाबे 8 वटा नास तहरी जम्मा 4,82,81,609 रूपियाँ अनियमित शीर्षकरी बेरुजुम रोइमो महालेखाइन 63 प्रतिवेदन अनुसार जिल्लारी ताए भन्दा बढ़ी अनियमित शीर्षकरी रायनसरी बेरुजुम रोइमो रायनस मात्र 1,04,82,664 रूपियाँ अनियमित दिएर शीर्षकरी बेरुजुम रोइमो छलाई दोर्दी नासपालिकरी ताई भन्दा दोस्रो बढ़ी अनियमित शीर्षकरी बेरुजुम रोइमो दोर्दी नासपालिकरी 88,49,715 रूपियाँ अनियमित शीर्षक बेरुजु मुइमु सु भएको विश्व नगरपालिकाले कुल बेरुजु मुइ मध्येले 75,07,466 रूपियाँ सुन्द्रबजार नगरपालिकाले 71,15,870 रूपियाँ अनियमित शीर्षक बेरुजु मुइमु छल्यो विश्व नगरपालिका मर्सङ्गी नासपालिकाले अनियमित शीर्षकले 52,78,449 रूपियाँ मध्य नेपाल नगरपालिकाले 37,96,330 रूपियाँ दुधपोखरी नासपालिकाले 30,18,354 रूपियाँ दिएर ताईभन्दा कम कोलसोता नासपालिकाले 22,72,760 रूपियाँ अनियमित शीर्षकले बेरुसुम्रोबा महालेखा प्रतिवेदन आठवटा नास तह मुबा लङ्जुङ्गेबी तायो पालिका जी तारखाबा आर्थिक वर्षरी मनास्लु हिमाल पर्वत रोहण रोयल्टी हो बाटै म राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत दिएर वित्त आयोगजी आर्थिक वर्ष 83-84 कार्यान्वयन तबा लैमरी मनास्लु पर्वत रोहण रोयल्टी योम्बा नास तह जिल्लाबै तायो पालिका सिफारिस लैम आयोगजी सिफारिस लबा अनुसार 8,000 मिटर भन्दा फिर्वै हिमाल मध्येरी लम्जुगरी 8,183 मिटर उछाएरी मुभा मनास्लु हिमालयन पर्वतरोहण रोयल्टी मात्र योबा विभूत आयोगजी सिफारिश लबा अनुसार लम्जुगरी सौलो नास तहजी हिमाल मुभा नास तहरी तहदिवालो जोरदिवा नास तहन रूपारी रोयल्टी योबा तैमो विषय अरू नास तहजी सीमा जोरदिवा तैमरे तह सूचक रोयल्टी योबा तैमो आयोगजी हिमाल मुभा नास तह चुदी बालयो सीमा जोरदिवा नास तह दिएर सीमारी पर्दिवा नास तह मध्ये जोरदिवा अरू नास तह लैमरी सौलो प्रकार सूचक निर्धारण लैमो सीमा जोरदिवा नास तहन वरपर मुभा विश्व नगरपालिका कोलसोता नासपालिका मध्य नेपाल नगरपालिका सुन्दरबजार नगरपालिका दिएर रायनस नगरपालिका देवी मापदण्ड बमोजिब्बै रोयल्टी यो बात तैमो मुलुक संघीयतरी यावालिसो अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन प्राकृतिक स्रोतैन रोयल्टी न बाँडफाँड लबा मुई बालुलावा मध्येरी 50% संघ दिएर प्रदेशले नास तहदे 25% पिमा व्यवस्थालाई म पर्वतरोहण रोयल्टी बापत युवा मुई मध्येरी नास तहबे पर्यटकीय संरचना बनिवा दिएर त्यो संरचनले बाल जोरदिवा खर्च अथवा कानूनी प्रावधान म विशेषलाई मैले पर्यटकीय क्यामे गोरेटो क्यामे पर्यटन क्यामै पदमार्ग लैमरी तायो क्यामै बनिल परिवहन ऐन डिफ्रीमा पर्वतरोहण बापत योबा रोयल्टी मुई तफा चारी फ्रीमा बमोजिम पर्यटन क्षेत्र भएको अरू क्षेत्रले उपयोगलाई आयो वा स्पष्ट फ्रीमो जिल्लाबी विभिन्न नास तह मधेरी 8,000 मिटर उचाइ कम उचाइले अरू 6 वटा हिमालयन रोयल्टी पनि योबा लैम
लमजुङ्गरको कोलासुतन नाचपालिका नौ गिलुङ्गरी गरीबी निवारण लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम मेडवा नोरबै नोरबै लागि होमस्टे व्यवस्थापन दिएर पाक्षिक तालिम तैम तालिम नाचपालिका उपाध्यक्ष सूर्य प्रसाद तमैना प्रमुख आठी ठार तरी वडाङ्गामा नोरबे अध्यक्ष हुमदास तमैना अध्यक्ष तरी तलो कार्यक्रमले नाचपालिका उपाध्यक्ष गर्मीमाया तमुसेर विशेष उपस्थिति मूलो कार्यक्रम पैमरे नाचपालिका अध्यक्ष जे तमुजी ग्रामीण पर्यटन विकास नाचमै संस्कृति न संरक्षण दिएर रोजगारी सृजना लबै लागि होमस्टे व्यवसाय महत्वपूर्ण माध्यम मुभा बिमो नोरबै लागि सञ्चालन तथा तालिमले गिलुङ्गर होमस्टे व्यवसायमा क्षमता अभिवृद्धि र सहयोग तथा अपेक्षा किम सम्वादक स्वरू तथा तालिम शुक्रबारसम्म सञ्चालन तथा तैम हिमाली जिल्ला मनाङ्गर न्यौलो नासा तहरी असल लालपरी बेरजु हुई शून्य मुभा महालेखाइन प्रतिवेदन जे हुई महालेखाइन 63 प्रतिवेदन अनुसार यब आर्थिक वर्ष मुइन लेखा परिश्रम तबरे चामी नाशपालिका नर्पभूमि नाशपालिका असल लालपरी बजे प्रमाण आतो पूरा आतवा बेरोजु मुई शून्य नोइमो चो बाहेक मनांग नासु नाशपालिका निसिङ नाशपालिका विषय असल लालपरी बजे आवश्यक प्रमाण पूरा आतवा बेरोजु ब्रह्म नासुङ नाचपालिका मात्र हो 3,61,657 रूपियाँ असुल लालपरी बेरेसो ब्रह्म विषा निसिङ नाचपालिका 61,68,951 रूपियाँ असुल लालपरी बेरेसो मुइमुनोबा महालेखाइन प्रतिवेदन छि उइम लमजुङ प्रहरीले याव वर्ष मात्र हो आठजना फरारी अभियुक्त खापोखै मध्ये जरिवाना असुल लालपरिवा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले याव महिनाइन कार्य सम्पादन सार्वजनिक लयमध्ये चु विवरण उपलब्ध लमी बिमो विभिन्न नासोधारी विभिन्न समयले घटनाहरू सम्मलन तैमरे भौतिक याव अभियुक्त दे खापोखबा वर्ष सौलो लिसु 3 वर्ष 5 महिना 19 दिन कैदिएर 59,000 रूपियाँ मुई असुल लब जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङ चाहिँ बिम खापोबा मध्ये अभियुक्त मदेरी खेमक दरिवाना बापत मुले कैद भुक्तानी लैमरे स्वतन्त्र अथवा कैद भुक्तानी क्रमरे मुभा 19 वर्ष मात्र हो लमजुङ प्रहरी 15 जना भोगिएवा प्रतिवादी खापो है म विभिन्न नीतिले घटेवा विभिन्न आपराधिक घटनाले संलग्न अथवा तमैदे लमजुङ जिल्ला अदालतका कैदेर जरिवाना तोकदिव फैसला तबरे तोकदिव सदै भुक्तान आलन हो भौदियाबा अभियुक्तमै मैमरी फैसला कार्यान्वयन लबै लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङ जी प्राथमिकता थिएवा बिम जिल्ला प्रहरी कार्यालय जी सार्वजनिक लब कार्य सम्पादन विवरण अनुसार भौदिया प्रतिवादी खापो हवा चलिबा मुदरिङ हो जनादे बिनी खापो हैमरी कार्यवाही दायर पोखैम प्रहरीजी अब महिना मात्र यौं बुनिमै कोलमै दिएर ज्येष्ठ नागरिक संघ सम्बन्धी मै अपराध पिउल जान प्रतिवादी दिएर लागू अवस्था सम्बन्धी भयो कृषिजना प्रतिवादी खापो हैमरी कार्यवाही लैम जिल्ला प्रहरी कार्यालय लम्सुङै अनुसार अब महिना मात्र यौं जिल्लाले दर्ता तथा 11 मुद्दा मध्ये न्यौल मुद्दा जगन्य न्यौल मुद्दा गम्भीर न्यौल मुद्दा जबरजस्ती कर्णाली सम्बन्धी मुभा बिमो चु बाहेक अरू न्यौल मुद्दा जी प्रकार लम्सुङै दर्ता तथा प्रहरीजी सार्वजनिक लब विवरण फ्रेम मर्सिङ फेरि तोखोबे लागि छोगयो फेरि छेउ भन्दा उहीँ सौ कुरा फेरि फेरि देखे।

लमजुङबाटै नासा तहारी बेरोजो मधेरै अनियमित शीर्षक मात्र यो करिब 5 करोड़ मुए चु शीर्षक रिताई भन्दा बढ़ी बेरोजुर आएन सरी तारखबा आर्थिक वर्षरी लमजुङ बिताए नासा तहारी मनासलु पर्वतरोहण रोयल्टी योबा तैमु सौलो नासा तहारी विशेष प्राथमिकता कुलसुत नौ गिलुङारी गरिबी निवारण लागि रूपये लागि होमस्टे व्यवस्थापन दिएर पाक्षिता तालिम लमजुङ प्रहरी त क्या अब मैनर मात्र यो आठजना बौद्धि अब अभियुक्त खापुखैमु वर्ष सौलो कैदिएर 59,000 जरिमाना असुल दे मनाङबिङ यौला नासा तहारी असुल लाल परिवा दिएर प्रमाण पेश अथवा बिरुजु शून्य अनियमित शीर्षक विषय तायो पालिका बिरुजु नाना 8 बजे खबर तमिकी मौसमी फेटे तखबे लागे छिजी प्राविधिक थो दिपेशले धन्यवाद भीमारी फेटे कछे क्या न खुशी माया तमिसो बिदा कि मु रेडियो मौसमी दी 95 मेगाहर्ज इन्टरनेट अनलाइन रेडियो मौसमी डट ओआरजी यदि दलत ओ छाजलो

जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में। हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रिम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ.
2: एक्सट्रिम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी.
3: तपाईँ रेडियो मर्सेङ्गी एफएम 95

छ्याजलो न खुसिमाए तमुसो कार्यक्रम सैनुरबे तारी तेबा म थोमय तुखोङी सामुदायिक रेडियो मर्संग दि 95 मेगाहर्ज तक्या प्रत्यक्ष प्रसारण रे जोड दि म जो कार्यक्रम द ग्या निजी थुमय सैनुर लोइथिबा तामय जो कार्यक्रम सैनुरबे ता द क्या प्रसारण लसि म चु कार्यक्रम दि बिस्या मर्सिङ ती नासपालिका तीन लमझुङ्गरी मुबा हर्सिङ कम्युनिटी क्याम्प साइट जी प्रायोजन लै म केमे हर्सिङ कम्युनिटी क्याम्प साइट घुमदिबर यही बिस्या सूरी केमेजी मनासलु बौद्धा डाक्टर हर्का हिमालचुली लगायत पे लेयो इन श्रृंखलामै चोलियो म सुदक्या केमेजी दुधपोखरी समावे पदयात्रा समेत ललखामु चुख्यो राष्ट्रिय विभूति भक्ति थापा कोलमेरी क्रमख्यो हो चुखरी केमेजी अर्गानिक चबसेमे चलियो म लोकल नगैसिया लोकल पा पाते पैंगो पोलो सुगडिसिया च्याउ तायो अर्गानिक चलियो म चुखलोरी केमे तायो थुमे बालो तैमरी पिकनिकै बिनी याल खामो खर्सिङ याबै लागि बोलेर जीवैन सुविधा बिनी म चुरी फ्री वाइफाई बिनी म चिसो लला तायो क्युइन व्यवस्था बिनी म सूरी परिवारमै घुम्दिबर याबै लागि बिनी पारिवारिक वातावरण नै बिनी म थुमै तिनी गजी विषया संगीता तमुइना सेनोरबेता गजी केमे माजरी प्रस्तुत लसी म थैली कथामय केमे जीविनी केमे सही नोर लोय थिस्युम विषया तारा लोय थेला पर्दी ताले विषया केमे सही नोर बतामय निजी निजु कार्यक्रम सही नोर बताक्या प्रसारण लमी म चयन लागि केमेजी निन रेडियो मर्सङदी जीमेल आईडी मर्सङदी रेडियो @gmail.com MARSYANGDIRADIO@gmail.com री फ्रीमरी पिमेल खामो चामत्रे आतन निन फेसबुक मेसेन्जर बिनी फ्रीमली पिमेल खामो केमैन से नोर्वे ताँदे निजी कार्यक्रम से नोर्वे ताँदख्या प्रसारण लम्बी म गदे विषय तोखो प्रविधि क्या साथ पीमो प्राविधिक थु तिलोजी।

विश्वास र सम्बन्ध जे ठेबा थियो कि म सम्बन्धैन क्रमरी युवा खुशी आत्मीयता दिएर सम्झना जी जीवन्दी ख्याब बनी बिस्या सम्बन्धरी खबा उतार चढाव जी लियो तामै लोभा अवसर पी मै तिनी बे कार्यक्रम रे प्रस्तुत लभा अनुभव जी प्रेम दिएर सम्बन्धैन वास्तविक पक्ष दे उही म चु सम्बन्धरी विश्वास समझदारी दे सम्मानन महत्व स्पष्ट उही म केमै बिनी केमै सेनो लोइ थी भा तामै दे यी रेडियो द क्या प्रसारण लन्घान सुम बिस्या यी न जीमेल आईडी मर्सेन्टी रेडियो @gmail.com देर फेसबुक मैसेन्जर आदि प्रिमरी पिमेल खाम कार्यक्रम सेनोर बताइन 17 श्रृंखला तिनी बेलागी छगयो छलायो हरेक बुधबार यनर बे 8 बजे केमै न सेनोर बतादे नजी खेमो केमै न सेदे सोर पिमो तले बिस्या तायो सेजी नियलियो बा अधिकार म अन्तिमारी सेन अर्वतांगे मरी टीवा तायो थुमेदे धन्यवाद पिमरी फेरी अर्को श्रृंखलारी अर्को थुइन सेन अर्वता पैमरी खबा बाचते भालो चु कार्यक्रम री नदी भालो प्रविधि तक्या साथ पिबा थु दिलुदे धन्यवाद पिमरी न खुशीमाय तमुस्यो विदा पिमो रेडियो मर्सङदी 95 मेगाहर्ज यदि दिलन ओ छाजलो यासजे ओरछे

0: चौरा नम्बर 7 लमजुङ, फोन नम्बर 0665 21 083,
1: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9856 13 375,
2: प्रोप्राइटर गणेश विश्वकर्मा, मोनु विश्वकर्मा।
0: सुन भनेको विश्वास हो, विश्वासको अर्को नाम गणपति ज्वेलरी।